0: बस चाइल्ड सिंगर अर्जुन कौशल।
1: अरे पुरनवा क्या रे भैया, अरे शादी वादी नहीं गाओ क्या?
2: अरे लड़की मिला ना।
1: लड़की नहीं मिली।
2: अरे क्या
1: भैया,